बिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्घ आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईटी। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरमहे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: बैंकले कभैलाई कसै अवस्था मिलै तमरो एटीएम मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङको गोप्य विवरण माग्दैन। यदि कसैले कसै माध्यम बठियाईलाई तुमसँग तसो जानकारी माग्याका खण्डमी बुझिहाल्या उहिले तुमलाई छग्दु खोज्जाछ। सँगै बैंकको कर्मचारी भएको दावी अध्या हरेक मान्छेको पहिचान प्रमाणित हरु उनरो विवरण मागिभर बैंकमी सोधौं सतर्क रहौं ठगी बठिए बचौ।
2: सिद्धार्थ बैंक बठियाई जनहितमी जारी सन्देश।
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई।
4: ए बा आइ गई क्या आज त पहिला नौकरीको पहिला महिना तनखा खाइकन आएकी होली मेरी चेली।
5: तनखा खाइकन होइन बुवा,

0: ni payapun. Tapi dasar drama ana rasa-rasa angnama lain apa dasi? Inilah.
1: Yakka gaji na? Hamra saya kekal denti badi. Biar motorcycle gumaa ka dharne kari na?
0: Bicha bicha. Drama ana rasa-rasa muar pasah bichai. Woi ekzama drama ana pokar ka bichi. Upacara kendra sam sugai bir drama behos wisek na pila kose. Pasah se pokar ka bicha pothaka.
2: Drama ana agar hina kai kamai pokar ka bicha tu sunilji. अपना देशी मोटरसाइकिल स्वयंसेवक विलक कारण सर्पदंशक ब्रेमेन उपचार केंद्र लेजिना सजिलो हिलबा
0: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पादी था पतला ठमटा मय असक मोटरसाइकिल स्वयंसेवक तरफ से बाट सजिला से वो छत्तह पादीला से ब्रेमेन चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो बिना मेर का सुचाक लगक एंटी वेनम विलक उपचार केंद्र में ले जाय पथा
1: अपना उमरा जैनी करी ना मैं ध्यान लगा सके लाजे
0: वहां न कतलक सपक फोटो खींचना बाची कर से उठेलन बिहार फोटो खींचना से सपक चिन्ह सजिलो बैठा उपचार करना से सजिलो बैठा
2: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाई नहीं तो ढील हुई जी
3: सफर दस दारन कल से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच में सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटीवेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में ले जा रही सप्प कटलसे मोटरसाइकल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
4: सर्पदंश संबंधी भर पर्द ओ सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेटिथा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर
7: अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ
6: ससानो कुरामा तनाव हुने
7: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने
6: कुलटमा लाग्ने
7: छटपटी हुने
6: मुटु धेरै ढुकढुक हुने
7: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 13 गते 20 गते र 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नु होला टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिजार सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहो र घूम जाए तो था पाए
2: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
3: के तपाईलाई थाहा छ
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
3: हो र
4: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं
3: के छ त विकल्प
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन
4: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
3: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
4: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली

0: बाबु ए बाबू काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ है पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चेक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गया झोला उद्योग में रख गया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: मानसिक समस्या भएका बिरामीहरूका लागि सुनौलो अवसर
4: अबदेखि टीकापुर अस्पतालमा मनोचिकित्सक डाक्टर लीला देवकोटा हरेक महिनाको दोस्रो तेस्रो र चौथो शनिबार आउँदै हुनुहुन्छ।
3: सासानो कुरामा तनाव हुने,
4: बारम्बार मनमा एउटै कुरा खेलिरहने,
3: कुलटमा लाग्ने,
4: छटपटी हुने,
3: मुटु धेरै ढुकढुक हुने,
4: जीवनदेखि निराश लाग्ने जस्ता मानसिक समस्या भएका नयाँ तथा पुराना बिरामीहरूले यही असार 13 गते 20 गते र 27 गते शनिबारका दिन बिहान ठिक 10:30 बजे अस्पतालको कोठा नम्बर 1 मा सम्पर्क राख्नु होला। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।

0: कोल्हापुर नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना। जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाईसराई जस्ता व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिनभित्र आफ्नो स्थायी ठेगानामा रहेको वडा कार्यालयमा गई अनिवार्य रूपमा दर्ता गरौं र गराउ। विद्यालय भर्ना गर्न, राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न, राहदानी बनाउन, नाबालक परिचय पत्र बनाउन, बैंक खाता खोल्न तथा राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सेवा लिन व्यक्तिगत घटना दर्ता आवश्यक हुने भएकाले आजै वडा कार्यालय जाउ। व्यक्तिगत घटना दर्ता गराउनु सबै नागरिकको कर्तव्य हो। नभुल्नु है, व्यक्तिगत घटना घटेको 35 दिनभित्र व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौं, जिम्मेवार नागरिकको परिचय दिउँ। थप जानकारीका लागि टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण इकाई र सम्बन्धित वडा कार्यालय।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
2: मई नहीं जाय, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थू।
1: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाये।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू, तब तू मैं अब भी जाय।
3: याद कर भी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: ए रुक रुक रुक
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
0: हो र हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123 हास डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधवार दिन के एक बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत
5: जब देखनो तो हिन है
4: यदि मन परत कल से अपन मनन सुनेना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जनन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी सुनने का नाम 561255 साता के बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज में सुने ना बिसरेबी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनते रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। सुदूरपश्चिम के 37 अरब 70 करोड़ के बजट, टिकापुर अस्पताल ही सही संज्ञा में स्तर उन्नति करना बजट के व्यवस्था। बजट कार्यक्रम प्रतिपक्ष सांसद शुक्रन से बहिष्कार। जानकी गांवपालिका से उत्कृष्ट नतीजा लंदा विद्यालय अनुदान। जनता मावी कंचनपुर उत्कृष्ट। मगर जाति उकरण के सांस्कृतिक प्रवर्धन तथा संरक्षण करने उद्देश्य से टीकापुर में भूमि पर्व उद्घाटन। उजना प्रतिनिधि प्राविधिक कर्मचारी निर्माण कर्मियों परामर्शदाता उकरण टीकापुर में भवन निर्माण आचार संहिता संबंधी अभिमुखीकरण। सत्तारूढ़ दलहुकन बीच भागबंदा लम्मा रसकसी के बीच मासुर पश्चिम प्रदेश सरकार मध्य रातमन बजट प्रस्तुत करल बा। बजट प्रस्तुत कार्यक्रम है प्रतिपक्षी दल के सांसद हुकरा बहिष्कार करल बाटे। आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री विक्रम सिंह धामी आर्थिक वर्ष 2083-84 के लाख 37 अरब 70 करोड़ के बजट प्रदेश सभा में प्रस्तुत करल बाटे। चालू आर्थिक वर्ष 2082-83 में लामगिल 33 अरब 47 करोड़ 60 लाख से बजट आगामी वर्ष के लग करीब 4 अरब से ढेर रहल बतागिल बा। मंत्री विक्रम सिंह धामी वक्तव्य में कुल बजट और बजट के स्रोत उल्लेख करल से फेन चालू और पूंजीगत बजट विनियोजन के अंक भर प्रस्तुत नहीं करल के हुई। प्रस्तुत स्रोत अनुसार बजट वक्तव्य तैयार करल से फेन सरकार से विस्तृत कार्यक्रम तैयार नहीं करलक हो। बजट कार्यक्रम में मंत्री धामी बजट के उच्च अंक सड़क सुधार के लाग विनियोजन करल उल्लेख करल बाटे। वहां सड़क सुधार के लाग 1 अरब 74 करोड़ 79 लाख विनियोजन करल बटुले बाटे। उसके उच्च पहाड़ी जिला दारचुला बझांगो बाजुरा में भेड़ा पालन के लाग 6 करोड़ 50 लाख विनियोजन करल बाटे। उसके बाजुरा बझांग में जलवायु उत्थानशील आयोजना के लाग 28 करोड़ 50 लाख छुट्टियागिला। पर्यटक सहायता कक्ष स्थापना पर्यटन क्षेत्र के विकास के कार्यक्रम अंतर्गत देव ताबी पर्यटन विकास कार्यक्रम संचालन करना बजट विनियोजन करगिल उल्लेख करले बाटे। गरीब दर ढेर समेत रलक 6 ठो स्थानीय तह में असम के ढकेरी गांवपालिका हो कमल बजार नगरपालिका डोटी के शिखर नगरपालिका बाजुरा के त्रिवेणी नगरपालिका तथा बैतरी के सिगास विश्वनाथ गांवपालिका में पोषण सुधार कार्यक्रम संचालन करना बजट विनियोजन करल बा। स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार के लाग सेती महाकाल यो टीकापुर प्रादेशिक अस्पताल है सही सैया में स्तर उन्नति करना। पहाड़ी जिला में अस्पताल है 25 से लेकर 50 सैया सम के स्तर उन्नति करना बजट विनियोजन करल बटवागिल बा। सेती महाकाल यो टीकापुर अस्पताल में प्रदान करते आयल डायलिसिस सेवा है सुदृढ़ बनेक लाग आवश्यक बजट विनियोजन करगिल वक्तव्य में उल्लेख करगिल बा। सत्तारूढ़ दल हुकन बीच विवाद में समेत दोपहर के 5 बजे के लग निर्धारित बजट बैठन सकलक बैठक बैठन सकलक ओर से बजट मध्यरात में धकेल गिल रहा। नीति तथा कार्यक्रम में आयोग से टोकल बजट सीलिंग है भागबंद के कारण बढ़ेना निर्णय करगिल रहा। आयोग से शुरू में 24 अरब के बजट सीलिंग देलक। पूर्व निर्धारित बजट सीलिंग से सत्ता दल एमाले अविन फे अपना दल के सांसद शुक्रन के मांग अनुसार भागवंदर नहीं पुगल पाछे मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह आकार बढ़ेना बाध्य हुई बजट निर्माण में संलग्न अधिकारी हुकरा बटोले बाटे। कोशी प्रदेश सरकार से चालू आर्थिक वर्ष में 35 अरब 88 करोड़ बजट कार्यान्वयन करती रहल मा आगामी बजट के आकार 40 अरब 44 करोड़ पुगाइल बा। कर्णाली से चालू बजट में 32 अरब 99 करोड़ कार्यान्वयन करती रलक में आगामी बजट 35 अरब 39 करोड़ पुगागिल बा। बागमती प्रदेश सरकार से चालू बजट में 67 अरब 46 करोड़ लानल बा और आगामी बजट में 66 अरब 93 करोड़ बराबर सार्वजनिक करल बा। उसका लुम्बिनी प्रदेश सरकार से फे चालू बजट में 38 अरब 91 करोड़ रूपया बराबर लानल ओ आगामी बजेटमा 37 अर्ब 38 करोड़ रूपया बराबर के लानल बा मध्य प्रदेश सरकार से चालू आर्थिक वर्षमा 46 अर्ब 98 करोड़ कार्यान्वयन करती रलकमा यी प्रदेश से आगामी बजेटमा समेत कुछ कटौती करके 41 अर्ब 13 करोड़ रूपया बराबर के बजेट लानल बा खोज खरमा एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर नगरपालिका को निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउंड बारे अत्यंत जरूरी सूचना। टीकापुर नगरपालिका को आयोजना में नगरपालिका भित्र का तपसिल का ओड़ाहरू में गर्भवती महिलाहरू का लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउंड सेवा तपसिल को स्थान मिति र समय में संचालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। तपसिल का ओड़ाहरूमा संचालन हुने सेवाहरू वड़ा नंबर 7 असार 2 गते सत्ती शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वड़ा नंबर 9 असार 3 गते झुंगा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वड़ा नंबर 5 असार 4 गते मणिकापुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वड़ा नंबर 4 असार 5 गते अश्मिरी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वड़ा नंबर 1 असार 6 गते एकता नगर कार्य समिति को भवन, वड़ा नंबर 2 असार 7 गते विजयनगर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वड़ा नंबर 1 असार 8 गते गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वड़ा नंबर 3 असार 9 गते रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र वड़ा नंबर 1 असार 10 गते ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र। सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
2: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
3: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।

विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा जानकी गाउँपालिका से उत्कृष्ट नतीजा लनुया विद्यालय अनुदान वितरण करल बा पालिका से एसई में सबसे ढेर विद्यार्थी पास करायल जनता महावी कंचनपुर हे 4 लाख अनुदान देहलबा उसके दूसरा ढेर विद्यार्थी पास करेन राष्ट्रीय महावी अमौरा हे 2,50,000 और तेसरा हुईलक भिरगुती महावी सुवर्णापुर हे 1,50,000 अनुदान देहलबा जानकी गांव पालिका मां समेत भरी कक्षा 8 में उत्कृष्ट नतीजा लनुया राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय खैरपुर हे 3 लाख हो दूसरा स्थान लनुया भिरकुती महावी सुवर्णापुर हे 2 लाख अनुदान देहलवा मोती महावी मोतीनगर में आयोजित कार्यक्रम में महावी तह के स्थानीय विषय में उत्कृष्ट शिक्षा उपकरण जनही 15,000 पुरस्कार दैगिलवा कार्य संपादन में उत्कृष्ट विद्यालय कक्षा 8 एसई में उत्कृष्ट विद्यार्थी उपकरण फे पुरस्कार दैगिलवा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में प्रतिनिधि सभा के सदस्य कोमल गेवाली पुरस्कार तथा अनुदान से शिक्षक विद्यार्थी विद्यालय प्रोत्साहन फिना वातावरण बनल बतोले बाटै कार्यक्रम में प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्ट से 2028 साल में बनलक शिक्षा ऐन नेपाल के शिक्षा प्रणाली संचालन करना करो से हाली ऐन लन्ना सांसद कोमल गेवाली है आग्रह कर लाटे सामाजिक विकास समिति के संयोजक कमल महतो से पुरस्कार से प्रोत्साहन व स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होना अपेक्षा कर लाटे मगर जाति उत्कर्ण की संस्कृति प्रवर्धन तथा संरक्षण करने उद्देश्य से टीकापुर में भूमि पर्व के उद्घाटन शुरू कर गिलवा नेपाल मगर संघ टीकापुर के आयोजना में 2 दिन के कार्यक्रम शुरू हुई लेखो कार्यक्रम में मगर समुदाय मनाई आयल भूमि पर्व के महत्व के बारे में चर्चा कर गिलवा नेपाल मगर संघ टीकापुर के कार्यवाहक अध्यक्ष दिलू घरती मगर से पहले दिन भूमि पूजन सहित के विविध कार्यक्रम करगिलो आज तमाम कार्यक्रम करके समापन होने जानकारी दिले बाटे कार्यक्रम में आशा बहादुर जिगम से मगर समुदाय के प्रचलित पर्व मनाईना अगन दांग से लेके अपने टीकापुर आयल बटोईटी दैविक समेत छठी नहीं हुए विपत्ति से बचना सहयोग हुए कहके भूमि पूजन करना नाच गान करती रमाइलो करना करगिल बटोले बाटन कार्यक्रम में सुदूर पश्चिम प्रदेश सभा सदस्य लक्ष्मण किशोर चौधरी प्रमुख अतिथि रहें कार्यक्रम में टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के वार्ड अध्यक्ष मोहन लोहार बिका मगर समुदाय के अगुआ धर्मराज घरती मगर रमेश थापा मगर संघ के सुदूर पश्चिम अध्यक्ष दल बहादुर घरती मगर मगर संघ के जिला अध्यक्ष वीरेन्द्र थापा मगर कमलपुन मगर लगायत से शुभकामना मंतव्य धरल रहे टीकापुर में भवन निर्माण आचार संहिता संबंधी जनप्रतिनिधि प्राविधिक कर्मचारी निर्माण कर्मी परामर्शदाता नक्शा निर्माण करुया कंसल्टेट प्राविधिक हुकरण जानकारी दैगिलवा टीकापुर नगरपालिका के आयोजना में कार्यक्रम में राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अंतर्गत के विपत्ति पार्श्व के पुनर्निर्माण और पुनर्लाभ शाखा के स्ट्रक्चरल इंजीनियर रवीन चौलागाई से तमाम खाल के विपद से बचक लाग भवन निर्माण करबेर मापदंड के पालना करे पर्ना में जोर दिले बाटे वहां टीकापुर में भवन आचार संहिता पालना के लाग पालिका से असल प्रयास करते रहो प्राविधि को दकर्मी उपकरण फिर जानकारी देना करल मनो घर धनी उपकरण समेत सचेत करना आवश्यक रहाल बटोले बाटे खोज खबर में एक घड़ी फिर से विश्राम विश्राम पास फिर से सुनते रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: वर्षेनी विश्वभरि नै लगभग 14 करोड़ बाल बालिकाहरू बाल विवाहको शिकार हुन्छन्। किशोर किशोरीको 20 वर्ष नपुग्दै गरिने विवाहलाई नेपाल सरकारले बाल विवाह ठहर गरेको छ। शारीरिक, मानसिक र व्यावहारिक अपरिपक्वताका बावजुद गरिने बाल विवाहले निम्त्याउने जोखिमहरू जस्तै अशिक्षा, असमानता, बिग्रदो स्वास्थ्य, एचआईभी एड्स, बलात्कार, घरेलु हिंसा, बहुविवाह, आत्महत्या लगायतका अन्य थुप्रै समस्याहरू आउन सक्छन्। नेपालको कानून अनुसार बाल विवाह सामाजिक अपराध हो। बाल विवाह गर्ने, गराउने र सामेल हुने सबैलाई कसुर हेरी 3 वर्ष जेल र 30,000 देखि 75,000 सम्मको जरिवाना सजाय तोकिएको छ। बाल विवाहको जोखिम अझ उच्च रहेको हुँदा समुदायका अभिभावक, शिक्षक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ लगायतका सबैमा आफ्नो समुदायमा बाल विवाह नहोस् भनी सचेत रहन अपील गर्दछौ। बाल विवाह विरुद्धको अभियान,
1: जानकी गाउँपालिकाद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
3: मै नै जाइँ, उहाँ आफ्नो अनुहार बिगारके घर से बाहर नै नै गर्छु।
2: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई टवाई तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादो, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
6: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। नेपालो चीन छिमेकी सम्बन्ध हे बहुआयामी कार्य मार्फत आपसी जनता हुकरन के हितमा केन्द्रित गर्न बारेमा छलफल हुल बा। चीन भ्रमणमा रलक नेपाल के परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल हो चीन के समकक्षी वांग यी बीचके सोमवार के चीन के बेजिङमा यी उच्च स्तरीय छलफल हुलक हो। द्विपक्षीय भेटवार्तामा बहुआयामिक कार्यमा आगे बढ़ैना चीन नेपाल के भावी विकास हो समृद्धिमा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाइल बा। परराष्ट्र मन्त्री खनाल चीन के विदेश मन्त्री वांग के मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा 4 दिवसीय औपचारिक भ्रमण के लग अटवार के चीन गए रहे। उच्च स्तरीय भेट के बारे में समेत अवगत करेटी मंत्री खनाल से कहलबाटे बेजिंग में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो सदस्य तथा जनवादी गणतंत्र चीन के विदेश मंत्री वांग यी भेट पाके खुशी लागल बतोले बाटे। वहां सीमा, व्यापार, प्रविधि हस्तांतरण, बहुआयामिक सहयोग में क्षेत्रीय द्विपक्षीय संबंध में सबको पक्ष में व्यापक छलफल हुई जानकारी दिले बाटे। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। सुरपश्चिम के 37 अरब 70 करोड़ के बजट, टीकापुर अस्पताल के 100 शैया में स्तर उन्नति करना बजट के व्यवस्था, बजट कार्यक्रम में प्रतिपक्षीय सांसद का बहिष्कार। जानकी गाउँपालिका से उत्कृष्ट नतीजा लनिया विद्यालय अनुदान, जनता मावि कञ्चनपुर उत्कृष्ट। मगर जाति के संस्कृति प्रवर्धन करना संरक्षण करना उद्देश्य से टीकापुर में भूमि प्रवर्धन कार्यक्रम हो। जनप्रतिनिधि प्राविधिक कर्मचारी हुकरन बीच निर्माण कर्मी परामर्श डाटा हुकरन टीकापुर में भवन निर्माण आचार संहिता संबंधी अभिमुखीकरण। लिटा बकलक थारू भाषा खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब्बे के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई। सामुदायिक रेडियो टीका प्रयासम सुनतेर विराम।

0: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
1: असार 6 गते पहिलो शनिबार
0: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
2: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
1: आउने दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
0: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825637772।
3: कौनो व्यक्ति है, लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण, लैंगिक हिंसा हो।
4: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैठे नाई देना, बोले नाई देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
3: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
4: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे, जय शिव जय।
3: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी कैलाली।
5: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 मेगाहर्ट्ज।

0: तहरा राजा जी का दिलुआ तृप्त जाई, तहरा राजा जी का दिलुआ तृप्त जाई।
1: उफ बल्ल घरक भिटा निखौराइदा
2: मुस्कान रिथाई, घरक भिटा आम्ही नित्य निवराई छो कि का खेतो में सखारन का लाग मिनी ले जाई पड़ना रह
1: आपको उराइदा जानती पादा
2: ले ले वही मिनी बना कर नहीं दिया तू ले जा दियस ना।
1: हाँ बिठा दई। ओहो हेरो यहाँ भिटा में तो बिला पो बा माथी ने सब दिए पड़ कि का हाँ सब दियो। अय्या दाई सब का डरल
2: दाई खै खै कहाँ काटो छाई
1: यहाँ दाई ये दाई ना जम का डरल।
2: अरे ले हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान बट सब का डरलस ले हाली
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सब करलस कर
3: ना क्या काकी तो मुस्कान न्या क्या का शांत होकर बैठो ना बेन काकी मुस्कान है ना स्वास्थ्य का ना सुटाई हर चर निकल रखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई स्वास्थ्य का सुटो तो
1: बैठा।
3: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा घर गहना निकल जाए ना मेकअप फाफसर बना रही वो हाथक चुड़िया की निकाल दी वाकर कटला हाथ भर नहीं चला रखना
2: बैठा भैया सबको कर लग ठाक आंजर पांजर चिर कर इंजेक्शन ले तान कर अथवा मुंह ले चूस कर बीस पोर निकलना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबको कट लग ठाक आंजर पांजर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
2: उसी नो कल से धर मेरा लान खा वही निटार खा वाकर सबको कट लग ठाम और लगा दियो तो ना नानू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनू नानू बुझनू
3: फिर काकी रामेशाना मोटरसाइकिल लिखा है कहीं तो झट्टा से झट्टा साधन खोज कर एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए सेक जाए कल से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाई सेक जाए दादा आई का अपना बेन ओटरा बिलासम हमारे गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कहीं का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम दाता अन कह कर हरा पड़ल हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुल हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था में को सर प्रदर्शक उपचार कई जिना रही हो वहाँ ले जाए पड़ल मुस्कान होना
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई
3: लो लो लो काकी मुस्कान थाना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बीच में वही खड़ा रही था झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सेक जाए कला से मुस्कान थाना बताई सेक जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहां कौन सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मुस्याकल सापन से फिर सावधान रह पड़ा मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझ साफ फिर काट से था संभव हुई सब कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकल से भूख सपो विषाह अलग निरलग पहचान के खा सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से गई कल से संपा डसलक मन यहाँ बताई सक दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फिर कम कर सक दिखा सपा दशलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाली यही ले उ मन एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई खा पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सक दिखा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

विजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच कर आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

0: फुका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटा का आज का कना हो का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं है।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बर थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुही
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: बाबू, ए बाबू, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाऊं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो।
1: जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या।
0: यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
2: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
2: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
3: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
4: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिप्पर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
5: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
2: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-4857-1828।
6: सामाजिक सञ्जालमी निकेरी जाँची बुझी भएर बैंकको आधिकारिक प्रोफाइल मात्रै फलोहरू, कसैले लिंक खोल्लाए अगाडि त्यो क्याको लागि हो, कहिले पठाएको हो रे, कहाँ जान्छ, निकेरी बुझी भएर खुल्याएको वेबसाइटको URL चेक गरौं।
7: अप्रिय घटना हुन नदिनलाई समय समयमी आफ्नो पासवर्ड बदलौं। आफूलाई केही शंका लागेले बैंकलाई छिट्टै खबर गरौं।
8: सतर्क रहौं, ठगीबाट बचौं।
7: सिद्धार्थ बैंक पठाई जनहितमी जारी सन्देश।
9: सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैं भरिलाई।
10: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधबार दिन के 1 बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत।
11: जब देखनो तो हिन है।
10: यदि मन परत हुई कले से अपन मनन सुनेना चाहती कले से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत, गीत के बोल बताई। गीत मन परना के 2 कारण, वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई, और अंतिम में 1 जन के नाम अनिवार्य ले दी। कले से हमारे गीत अपने पक्के से सुना, तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 091-561-255 साता के बुधवार दिन के 1 बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी। मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमंत स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग अपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरमहेन जानकारी कराईती। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमहे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फैले जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: युनाइटेड एकेडमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो
2: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यवहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
1: पढाइ हुने विषयहरू अनिवार्य नेपाली अनिवार्य अंग्रेजी सामाजिक गणित ऐच्छिक लेखाशास्त्र ऐच्छिक वित्तशास्त्र ऐच्छिक अर्थशास्त्र कम्प्युटर विज्ञान भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू
2: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि
1: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि
2: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि
1: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि 091-560-738 091-561-446 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77
2: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली

0: आई बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दी एक भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तरह तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान्छे के कत्रा सुगर बना कन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41 208 और 98486 39 261

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैती बा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटी गतिलो ठाव से झोला आनला से लड़का सामान निहरा।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगलान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहीं आनल झोला दस काटस बाटिन, ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
4: जिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार र बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।

जयगुरु बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम अंताक्षरी अपने गलत के सलाह के बैठक सबको रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह स्वागत के संगे अभिवादन कर चाहत मानी अमी के भाई टेक मेट के साथ भेट भाई आकाश चौधरी और मई बाटो अपनी अपने संघया मानी संगारी कसिन बहाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई भी मैं एकदम आराम बाटो अपने एकदम आराम हुई भी कना भरपूर आसने बाटू एकदमै असार महिना के हामीले 2 गते प्रवेश कैसे कलबारी आज असार महिना के दोस्रो दिन घाम चाहिँ ओत्रै दबावे हेरि न खेती किसानी के समय वा किसान दाजुभाइ हुकन के खेतवा में काम करना बेला बाबै एकदमै काम करती हुई तर घाम फेन उहे मेर के बाका जोन घाम से कामे नै कर सकना मेरा काम तो अपन स्वास्थ्य पे ख्याल करके काम करबी देव जन हम देखत हूं खेतवा में बियार लगायत कहूं बियार काटत कहूं हर जोतत कहूं फरवा खेलायत मतलब अपन अपन तरीका से सबको जाने व्यस्त बाटी शायद अब लागत में तो अपन स्वास्थ्य ख्याल करके फिर काम कर भी करना मैं प्रोग्राम जानकारी कर दी बात हूँ कहे की अपना घाम बा घाम एकदम चरचर चरचर देह में घाम लगना मेरा एक अवस्था बा तो बहुत जन के बानी का बा कि शरीर मन शरीर मस्ते जम्मा लुगा फुकाल के यानी कि नंग ढोंडा होके फिर काम करना केकरो केकरो बा का जस्ता गंजे की लगा के काम करना मतलब कर सही दाजू भाई हूं तो वहां वैसी के ना कर भी अपन डायरेक्ट छाला में घाम परत कर से छाला है फिर एकदम सीधा सर पारत तमारे हरेक मेरा एक रोग लागे से कर तो उस चीज पे अपन छाला है बचा के लग फिर पार्टी का प्रभु जैसे फिर घाल के अपने के काम कर भी और विशेष करके कटन के सूटी के कपड़ा लगा के काम कर भी कल से फिर अब हमन सहज हुई मुंडी में कुछ मुंडी है कुछ सेफ्टी हुई ना चीज कपार में मतलब बांध के फिर काम कर ले से फिर अपने के सहजता हुई तो अपने जैसे सहजता हुई वस्ते के काम कर भी गर्मी बात बारे में अपने इन जानकारी करी थी बारू और जतरा हुई भी सर सफाई में ध्यान दे भी दीना हूं लही भी और पानी के मात्रा शरीर में बढ़ई भी पानी पी भी बिना प्यास के प्यास पे पानी पीना प्रयास कर भी कहेगी शरीर मन से पानी पसीना निकल जाए हमन काम कर बेला में तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए हमारे से पानी से एकदम ढेर पीना प्रयास कर भी करना कार्यक्रम के शुरुआत में जानकारी दे थी कार्यक्रम में चाहे अंताक्षरी खेलाई गीत गाने एक छरल रुचि रहे 091-5162-255 का लाइन खोले बा और अंताक्षरी खेलाई क साइकिल से क का की कुकू के कई अ साइकिल से अ आ ई ई उ ए आई कोई भी अक्षर से थारू नेपाली भोजपुरी गीत गायक लगाई भी तीन चोट अपने गई भी तीन चोट मई गए तो अपने कमर गाल गई तेस्तो पर्सन के कलर गायी वही का नाम जानकारी करते कार्यक्रम के शुरूआत में श्री गायस कर एक रमाइलो गीत सजना गीत जोराबटी सजना गीत के पास में आईम सजना गीत सुनती की हमार कला संस्कृति संस्कार हमार देह झमझमाए तब मारे गीत सुनी ताकि हमार बरखा के रौनक जागे

0: रली भाई, करें इस कार्य तो कर दे
1: ना बाबू पानी।
0: आप भी टूर ना दे ना
2: बरबर वाला।
3: असो बरा बढ़िया भी यार बावे ना
1: बाई का।
3: बरे चूर बावे ले हर भाई फुगा दे
1: ले भैया ही फुगा दे ले
0: अक्के घरिक बयाल अक्के घरिक पानी बरखास्ते होए।

हजुर बिल्कुल रमाइलो सजना गीत जोली आफ्नो गान गेला पक्कै फेरि गीत सुनके मन परल हुई आफ्नो गान और आफ्नो गान याद आयल हुई कि खेतो लगाइल बेला के याद आयल हुई कोही खेतो लगाई थी बिटो याद आई थी बिहार लगाई थी बिटो याद आई थी शायद लागत नहीं वो मारे अपने गान कुछ अतीत के कुछ बिटल चीज याद आए कना उद्देश्य लेके विशेष करके मैं गीत सुनैनु अपने कान और अपने कान एकदम मन परल हुई हमारा फेन का पहले हमरे फिर अस्तक अस्तक सजना गई थी बिहार लगई थी मतलब हर खेतवा जोटी करी और अस्त के मेरवा बंती करी तो अस्त से गीत के याद आएगा और अस्त से गीत गुनगुनाई हमरे अपने गुनगुनायल हुई भी शायद गुनगुनाइट हुई भी अब वर्तमान बेला में अब एक अवस्था में आजकल के युवा हूं के फिर असिन असिन हमार संस्कृति संस्कार है बिल्कुल नहीं भुलाए पड़ना हो और अपने ध्यान रख पड़ना हो अपन से आगे पुरखा हुकरन संगे जरूर फिर खोजने कही के बुझ के ये गीत कसिक गई थे ई बेला में कसी के हमारे गीत गाए परत करना चीज चाहिए ध्यान रखना एकदम जरूरी है। ओके वही बात नहीं कार्यक्रम में सहभागी जन टिकट भी सुनने का नबे 561255 था 0915612555 लाइन एकदम खुला बा फटाफट डायर कर भी कार्यक्रम में सहभागी जन भी हमारे संगे संगे विशेष करके हमें अपने हुकन के लग चाहिए लाइन खुला के लिए बाटी आई भी और कार्यक्रम में सहभागी जन भी कहना मैं आप लोग जानकारी करते बाटू तो डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जन थे कर भी अब ठीक ठाक गीत जोड़ा गीत के पास मैं नहीं बाटू डायल करते कर भी सुने 91 561255 लाइन खुला।

दीवानी मस्तानी तुमर प्यारी कबसम रहो तू कन्या कुआरी। बिल्कुल ही रमाइलो गीत कार्यक्रम है जोली अपने हुकन के भरखर रेडियो खरोली विकल्प से यह रेडियो टीकापुर एफ एम 101 MHz जो से हमारे वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एफ एम एप्स हमारे पात्र मार्फत सुन सकते इंटरनेट के पहुंच रहा संगारी के अपने ठाव से और जहां इंटरनेट के पहुंच नहीं हुई कल से उठाऊ जहां रेडियो टीपट हुई रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz मार्फत सुनी सकती का नाम है जानकारी करती बात हूँ तो कार्यक्रम में सहभागी जनटेकर्वी कार्यक्रम में आईटेकर्वी कार्यक्रम में अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता रही का नाम है जानकारी करती बात हूँ दोपहर एक समय अल्छी समय है कुछ सत्सम रमाइलो करे लग अल्छी समय है कुछ सत्सम रह रंगीत करे लग अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता रही का नाम है अपन जानकारी करती बात हूँ तो फटाफट चाहे डायल करवी कार्यक्रम में कुछ नहीं हिचकी जाके मैं फेन कौन कम मैं फेन कार्यक्रम विशेष करके अंताक्षरी खेली से कम कार्यक्रम में गीत गाई से कम गीत गईना एक सरल संगे हमारे कार्यक्रम में सहभागी जनाईदी का नाम है आपको जानकारी करना चाह रहा हूं तो फटाफट चाहे डायल कर भी सुनने 91 5 61 255 था 0915 6 1 2 5 5 लाइन एकदम खुला भा कार्यक्रम में सहभागी जनाईदी कल से अपने को हमारे रमाइलो गफ हुई का नाम है आपको जानकारी करती बात हूं तो डायल करते कर भी करीब करीब 1:45 प्रदेशम अठे पर एक ठावर हमारे गीत जोड़ गीत के पास मैंने बात हूं डायल करते कर भी सुनने 91 5 61 255 लाइन खुलाई बा।

0: हजुर बेलुका मालु गीत सुन्ते सुन्ते कोही टेलिफोन लाइनमा अघिबाट म बोल गर्न चाहन्छु के हुई चाहिँ कहाँ से म स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर राम राम
1: राम राम हजुर राम राम
0: नारायण जी का बा हाल खबर
1: के बा का परल परे बाटी पहिल कल्ता हनन बदर कमा बा
0: आज घाम बा अनि खेतवामा अभिन सुरसार नै हिलो नै अपने के गाउँ और घर और
1: हिजिल बा हेरी और जन के खल्ला खल्ला के खेतवा लगना मन के
0: अच्छा अपने को हर लिंग चाहिए जो खाल खाल खेतों में जो पानी जम जीना ठाव में चाहिए अगारी शुरुआत कर सके बात नहीं जब पानी जमना बेला में धान बर्बर हुई जीना मेरा का अवस्था रही नहीं
1: ओके
0: अब ठेके हम कहाँ से समझली नारायण जी
1: हमारे सबना पड़ते हजूर
0: ओके कार्यक्रम में सहभागी जन आज कथे गर्मी बा बताई थी हम
1: एकदम एकदम प्योर धाम से नहीं हो चोटकर एकदम जूता का बल हवा बहुत डांस चोटकर
0: ओके
1: खुश से बा हम वाले से भी बयाल लगा तो इतना लग जाए के लिए
0: मतलब आज हवा बयालो चलती बा नहीं तब तो खेतों में काम करना दादू भैया हूं ग्रहण दीदी बहने हूं ग्रहण खासे घाम नहीं लागत नहीं और दिन के बराबर नहीं
1: नहीं नहीं
0: आज तक हवा चलना जब तक चटकार घाम रहे से फिर हवा चलने से शीतल महसूस हो जाए था नहीं ओके कार्यक्रम में सहभागी जन एकदम खुशी लागल अंताक्षरी खेलना हो अंताक्षरी तो आपने नहीं खेलते गीत तो जरूर सुनाई थी ना आपने
1: हजुर हजुर
0: नारायण जी के गीत के दीवाना हूँ तो बहुत बात है नहीं
1: बहुत बार दीवाना संगरेन का पर अच्छा लगता है को विसर दे बिजी रे बोला
0: हजुर
1: टाइम नहीं मिला था
0: चलो
1: कहते हैं कि आज जितना है नहीं देखो यार खाली दवाई
0: हाँ
1: यार टाइम नहीं रहा विसर दे करो
0: कबू कबू विश्रा अर्थ काम करती करती गई है ना
1: हजुर बिजी रहो
0: हाँ हाँ ली तो शुरू कही था एक ठो गीत अपने से
1: अब कोई धर्म नहीं करती
2: मन का पति बोसली गरीबन के छोरा
0: धेरे धेरे धन्यवाद कार्यक्रम में मजा के सुना दिली अब हमरे एक ठो गीत बजाब अपने के लगे अपने किहिन किहिन सुनाई चाह भी नाम ले सक थी नारायण जी
1: सबसे पहले अपने है वो अपने कह पल्ली आकाश कर है
0: धन्यवाद हमारे से
1: अपनी तरफ से धन्यवाद और कार्यक्रम सुने थे मजा लगा थी हासी लगा थी हाथ
0: आपने समझा थी आपने समझा थी कि मोरे गीत सुन के और जाने संग्रह के हाँ सब ही कि आपने है सब याद आई था
1: याद आई था मैंने सुन थे तो मैं याद आई था
0: बिल्कुल
1: जब जब जब काम मारे लगते थे कभी पली दर ना खेला वाला तब तुम थोड़ा रमाइलो लागत करते हमारे में
0: हजुर हजुर हजुर राम राम वहाँ फर्क नारायण चौधरी जी रमाइलो का फूल वहाँ से हमारे नियमित कलर आज कब कब बिस्तरा दर्द हो गए तो मिहिन कठिन काहे आज नहीं फोन कर लो काहे गीत नहीं सुने लो कहे संग्रह कठिन कहती नहीं अगे आज फिर हमारे कार्यक्रम में मजा गीत सुना सक नहीं वहाँ है धन्यवाद देती फैन से ठाव गीत जोड़ा पठी बड़े ठाव रमाइलो गीत के बाद से मैं डाल करते कर भी 91.5 61.255

हजुर, बिल्कुलै रमाइलो गीत जोडी कार्यक्रममा बाट मामी छन् अमेके साथ भेटै भाई आकाश चौधरी अब ठिबेर केसी व्यापारिक विषय अमर जाए व्यापारिक विषय के पास नै बाटु रेडियो सरके कहौँ पनि जेबी डायल करते कर विश्व 91.5 61.255 के लाइन खोल्ने भए तपसम्म एकैछिन व्यापारिक विषय विश्राम के पास आइने बाटो

0: टीकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: नरेन दादु मैं तो अपना फोन आईकी डर से आ गई नो है बाउती कहाँ बाती
1: ओ गोंदे में सुटल बाती बाबू चोली न भरिए
0: फौजी कहाँ से काटे अपना हर खादर पावे तो सफा सुखर बने रहे बाती तर फिर काटी भी डाल ना अपना हन
2: यहाँ पोली भूको कट लगो नानी अपना एम्बुलेंस है खबर तो करना बाटा कटा बेर में को आप ना हो
0: ना से भौजी हमारे बाटी अपना हना कुछ नहीं हुई बिन गुआरा हना जिन से रेगी वो नरेश दादू एम्बुलेंस से ना समय लागे से था नगर के को मोटरसाइकिल बाक लसी उहे में बैठा के भौजी है ना सरपरन से उपचार केंद्र ले जीना तैयारी करो पड़ल
1: ये बेला का खाना जात फे दिए न्यू इट ना स्वयं सेविका दीदी
0: हो अपना ठीक कली डॉक्टर निकट सम बेरेमेन कुछ से खवाई नहीं हुई
3: सपवा कट्टी की सहज वातावरण बनाएक सपवा कटलक अंगहन स्थिर बनेना प्रयास कर पठा तम्म कस गेलक रुगा गरगहना घरी पेटी मुन्द्री बाकल से फरफर करारी बेरमने अक्टेले से झन समस्या बिना बिल को से बेरमे न शांत रह सहयोग कर पठा क्यूमने सपवा कटलक ठाव से ऊपर दौड़ी लिए कस खबर नाथे कठा

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आदि था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गटीलो ठाउं से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर भर आई थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटाका आई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कापी हरी थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला दस कटरास बाटीन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रट गई झोला उद्योग में रट गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-2373।
3: आई हो बड्डो घर कहिया से जेबो पाछ से शुरू करल मने घर सिजा सेकल
4: अरे का करू री बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नहीं करत का कहीं ना हो का
3: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बने लाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
5: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
4: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोपराइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 98481-43-26।
6: हजुर।

हजुर सँगारी आफ्नो कनसँगै गफ गर्दै गर्दै आफ्नो सँगै बात गर्दै गर्दै कार्यक्रम निर्धारित समय डगर काटे लागल टाटा बाबा के जना बेला हो गिल भाउ मारे त्रबर्ज रेडियो सुनको साथ दिली आफ्नो धन्यवाद टेक्निकल के साथ दिली भाइ का चौधरी हे भाइ धन्यवाद और कल करके साथ दिए अपने सबको धन्यवाद और दिन और बेला और समय म अपने हुकनके सँगै फेन से भेट्ना बाचा गर्दै गर्मी के समय बा गर्मी है ख्याल करती काम करती स्वास्थ्य ख्याल करती काम करती सबसे बड़ा स्वास्थ्य हो स्वास्थ्य ख्याल करके काम कर विकल से हमारे जीवन भर बढ़िया रह का नाम अपने जानकारी करती अपन स्वास्थ्य ख्याल कर भी का नाम फैन से जानकारी करती कार्यक्रम से कार्यक्रम अंताक्षरी अपने गलत से मई कार्यक्रम संचालक मई मिशन आएगा चाहू राम राम जयदेव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पास शुभ रहे रेडियो टीकापुर एफएम सुनते कर भी।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल थो
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाढ़ खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुईल घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाए, तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाए।
1: उफ बल्ल घरक भीता निखौराइदा
2: मुस्कान रिथाई घरक भीता आमी निके निउराइ छौ कि का खेतो म सखलारन कला मिनी लै जाय पना रह
1: आबो वराइदा दांती बादा
2: ले ले वही मिनी बना कर नहीं दिया तू लै जा दियस ना।
1: हाँ बैठा दाई। ओहो हेरो यहाँ भित्ता मत बिलाको बा माथिले सबर दिन पर टीका हाँ सबर दिउ अय्या दाई सब का डरल
2: दाई खै खै कहाँ काटन छै
1: यहाँ दाई ये दाई ना जम का डरल
2: अरे ले हाली क्यों बाटो मत छै मुस्कान मत सब का डरलस ले हाली
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपवा करलस कल
3: ना क्या काकी ओ मुस्कान न्या क्या का शांत होकर बैठो ना बेन काकी मुस्कान न श्वास का न सुटाई हल सब निकल रखना
2: बैठा भैया मुस्कान छाई श्वास का सुटो ता
1: बैठा
3: ओ काकी मुस्कान भलक लुगा गर गहना निकल जाए ना मेकअप फांसर बना रही ता ओ हाथक चुड़िया की निकाल दी ता वाकर कटला हाथ भर नहीं चला खना
2: बैठा भैया सबो कटला ठाउ आंजर पांजर चीर का इंजेक्शन ले तान का अथवा मुंह ले चूस का बीस पोर निकले ना हो कि
3: नहीं नहीं काकी सबो कटला घाव आंजर पांजर कटना दगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
2: उसी नो कल से झर मेरा लान खा वही निटार खा वाकर सबो कटला ठाउ मर लगा दियो डना ना नू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली खरबुटी और जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानु बुझनु
3: फिर काकी रामेश्वर मोटरसाइकिल लेकर आई कही था झट्टा से झट्टा साधन खोज कर एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए सेक जाए कल से मुस्कान होना झट्टा सुमर बनाई सेक जाए दादा का अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कही था स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती का तुम दाता हम कह कर हेरा पड़ल हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुलल हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था में को सर्पदंश उपचार कई जिना रही हो वहाँ ले जाए पड़ल मुस्कान होना
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई
3: ले ले ले काकी मुस्कान होना निहिला का मोटरसाइकिल का सिकक बिक्सा में बैठा रहा रिका झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सीख जाए कल से मुस्कान होना बताई सीख जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहाँ कौनो सवारी साधन उपलब्ध निहिलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मोटरसाइकिल सापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो है ना व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के का समझल साफ फिर काट से था संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखा सकल से भूकर सपो विषहार अलग निरलग पहचान के खा सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर सकल से सपो डसलक मन यहाँ बताई सक दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सकती था सपा दशलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केंद्र में ले जा डाली यही ले ऊ मन एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पड़ना वो सही जानकारी लाग वो लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कई था पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुरहनके संजिक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने कुल सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हम पात्र ओ नेपाली पात्र मफे सुन्टी धलबाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से क्षयरोग मुक्त पालिका अभियान अन्तर्गत टीकापुर नगरपालिका में क्षयरोग के जोखिम समूह में स्क्रीनिंग तथा खोज पत्ता लक्षित। राष्ट्रपा सुदूरपश्चिम के सभापति विष्ट निर्वाचित। चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2083 स्वीकृत। ओफिफा विश्वकप 2026 उरुग्वे और साउदी अरब बीच के खेल बराबरी। नेपालमा क्षयरोग मुक्त पालिका बनेना स्थानीय तह समुदाय स्वास्थ्य संस्था ढेडोसिन प्रयास गति रहलबाट ओ अनुसार टीकापुरमा ढेडोसिन प्रयास छुटी रहलबा नेपाल सरकार 2078-79 से शुरू कलक क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान 150 बढ़ी पालिकामा विस्तार हुला। टीकापुरमा क्षयरोग मुक्त पालिका बन्ना प्रत्येक वडामा समस्या पहिचान विश्लेषण प्राथमिकता निर्धारण कार्ययोजना तयार गर्न करिबा सहसंग पहिचान निदान रोकथाम उपचार प्रेषण वसह के सक्कू सेवा निःशुल्क उपलब्ध करना करगिलवा हरेक वडा में क्षयरोग निदान के लाग स्वयंसेवक हटेलाबाट महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा क्षयरोग स्वयंसेवक मीना टमट्टा समुदाय में क्षयरोगी निदान में अभिन्न समस्या लगबोटीबाट पालिका के विद्यालय सामाजिक संस्था महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका आमा समूह टोल विकास संस्था बड़घर मार्फत सचेतना फैलाना काम करतीलबाट शहरी स्वास्थ्य केन्द्र सत्यकी गोविन्द कठायत वडा नम्बर 7 मा किरिक क्षयरोगके 15 जना बिरामी हुकन जोखिम रक समूहके क्षयरोग परीक्षण शिविर कलक बोटिलोबाट उहाँके क्षयरोग संक्रमित हुक्र लापरवाही कलक समुदायमा रोगसना जोखिम भरला कलक बोटिलोबाट टीकापुर नगरपालिका के जनस्वास्थ्य अधिकृत एन्टोन बसगाई जोखिमरलक समूह व 70 वर्ष से ऊपर ज्येष्ठ नागरिक के खखार परीक्षण करके समय में उपचार में लड़ना प्रयास उठी रहलबोटिलोबाट क्षयरोग अर्थात टीबी महिलक लम्बा समयसम खोकी लग्ना खकार में रगत देखना तौल घटना रात के अत्यधिक पसिना हिन्न लगातार थकान महसूस हल्का जुरी और छाती दुखना जसिन समस्या हुआ संक लक्षण देखला से तुरंत स्वास्थ्य परीक्षण करपना स्वास्थ्य कर्मी के सुझाव बा। सत्तारूढ़ दल और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासपा के सुदूरपश्चिम के सभापति म इंजीनियर प्रकाश विष्ट निर्वाचित हुईलवाट इंसियाख तथर्थ समिति के सभापति हुईल विष्ट पहले अधिवेशन मसे निर्वाचित हुई रही कार्यक्रम संपन्न मतदान के मतगणना अनुसार विष्ट 398 मत पैलासेफे यहां के प्रतिस्पर्धी जनक सिंह धामी 154 मत पैलाट कुल खसलक मत 51% कटेना उम्मीदवार विजयी हुना व्यवस्था अनुसार विष्ट पहिलो चरण मसे निर्वाचित होसेकलबाट विष्ट पराजित हुलक धामी प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 1 कञ्चनपुर मसे विजयी हुलक प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट सभापति सहित 16 भूगलो 15 खुल्ला तथा समावेशी सदस्य चयन गर्न मतदान हुइल रह। चिकित्सा शिक्षा आयोग के छात्रवृत्ति अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2083 स्वीकृत गर्न जारी गर्न निर्णय गरिबा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बाजेन्द्र शाहकी अध्यक्षतामा आज बैठक आयोगकी बैठक उक्त निर्णय कलबाट प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालकी अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद अर्थ मन्त्रालय मसे सहमति प्राप्त हुलक 24 घण्टा नै वित्तीय आयोगकी कार्यविधि पास गरी विगत से कानूनी अस्पष्टता और समस्या दीर्घकालीन रूप में समाधान कलबाट नेपाल राजपत्र में प्रकाशित कुशी नेपाल ऐन संशोधन करना बनलक अध्यादेश 2083 मार्फत राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 में दफा 54 ख थपलकसंग आयोग आवश्यक निर्देशिका व कार्यविधि बनना कानूनी नगर खुलगी रह इंसिया ख विधायन ऐन 2081 के दफा 35 के कारण आयोग के पुरान सक्कू निर्देशिका व कार्यविधि स्वतः असामान्य खारे शुल्क कानूनी रिक्तता हुई रह उक्त समस्या समाधान के लाग असारे गति अर्थ मंत्रालय शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय मसे सकारात्मक राय सहित की सहमति प्राप्त हुई रह कार्यविधि के सार्वजनिक शिक्षण संस्था निःशुल्क छात्रवृत्ति स्नातकोत्तर तह 9 डीएम एमसीएच समेत निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध कराइल बापत अनुदान वितरण करना नगर खुल रह हिंसाका कार्यविधि आयोगकी तर्फमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्था सकु तमनौ स्नातकोत्तर तह डीएम एमसीएच समेतमा निशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध क्रायल बापत अनुदान वितरण गर्न नगर खुल्बा बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताकी सह अध्यक्षता तथा एकी उपाध्यक्ष डाक्टर श्रीकृष्ण गिरी अन्य सदस्य कोनकी उपस्थित हुन् रह खोज खबरमा घेर विश्राम विश्राम पाछ फेरि विश्वतिर सामुदायिक रेडियो टिका प्रोएफएम
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन् प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ
1: के छ त विकल्प
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन
2: हुँदैन टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाइ शाखा टिकापुर कैलाली
3: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्ह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटी सत्कार पोलिक्लिनिक म बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उक्र संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59
0: प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक 2083 अन्तर्गत मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकको पर छलफल जारी रहवा छलफलमा सांसद र विज्ञान उपविधि प्रबलीकरण बन्न पूर्वाधार आँखा बढ़िन पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक लगबटीबाट सांसद र देशमा आर्थिक रूपमा उपर उठेन विज्ञान प्रविधिमा लगानी गर्न पर्ना हुले सफे विज्ञान प्रविधि हो नव प्रवर्धन के लाख 4 अर्ब रूपियाँ के हाराहारीमा केटिक रकम विनियोजन हुँदा पोधेहर बजेट साधारण खर्च नै वटलक नव प्रवर्तन के क्षेत्रमा काम हुन कठिन देखलक बटिलोबाट सांसदक र न्यायकी पहुँच मसे वञ्चित छुलक विपन्न नागरिकको निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गरिन जम्मा 11,97,000 क्रिक रकम धरलक न्याय हो कानूनकी पहुँच मनैरलक नागरिकको न्यायमा पहुँच पुगेन नै गर्न रकम छुटेलक कति जनता न्याय दिनाकके बजेट ऐना नै सकल बोटिलोबाट सांसद थुक्र बजेट निर्माणकै समयमा सरकारमा प्रणाली अनुसार नै बजेट ऐना सेफे ओहो नै सकल जिल्लागत रूपमा विभेद हुन गर्दै सड़क लगायतकी पूर्वाधार विकासकै बजेट अनलक बोटिलोबाट सांसद थुक्र शिक्षा स्वास्थ्यमा 3% हो विद्युतमा 5% कर लेना हो आम मनकी मारमा पलक बोटिलोबाट सांसद थुक्र लागू औसत नियन्त्रणकै लाग कम रकम विनियोजन हुलकटी लागू औसत प्रयोगकर्ताकै संख्या भर्ती गलक अवस्थामा युवाहरूको लागू औसत दुर्वेशिनी मसे जगाएक लाख चेतना विकास कार्यक्रम रोजगारी सृजनामा बजेट जोड दिन नै सकल बोटिलोबाट सांसद थुक्र सक्कु नागरिकमा स्वच्छ खानेपानी पुगेन विद्युतकै सहज प्रयोगको आपूर्ति गर्न निर्माणधीन जलविद्युत आयोजनाकै काम समयमा नै सम्पन्न गर्नकै बजेट प्राथमिकतामा पर नै सेक्लक बोटिलोबाट सांसद थुक्र अर्थ मन्त्रालयकी योजना कार्यान्वयन ध्यान पुगेन नै सेक्लक पुँजीगत खर्च बढ़ेन प्रभाव कार्यकारी रूपमा बजेट परिचालन गर्नतर्फ ध्यान दिन नसकेको बुटिलोबाट अर्थ मन्त्रालय सबको खर्च करके धरना साठो विषयमा समेत वार्षिक कार्यक्रममा रकम नैदेखलक अर्थ मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गर्न तरिकामा पुनरावलोकन आवश्यक लक सांसद थुक्र औंडिलोबाट सांसद थुक्र पूर्वाधार विकास के क्षेत्रमा कलक विनियोजन प्राप्त नै हुलकटी बजेट बढ़ेनामा कलबाट बैठकमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पूर्वाधार विकास मन्त्रालय गृह मन्त्रालय ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदकी कार्यालय राष्ट्रिय योजना आयोगके सचिवालय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिकी कार्यालयकी विनियोजन शीर्षकीय पर छलफल भइरहल बा। चीनकी चार दिन औपचारिक भ्रमणमा रलक परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालो चिनिया जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलन सीपीसीपीसी के राष्ट्रिय समिति के अध्यक्ष वांग हुइन बीचके भेटवार्ता हुई बा। उहाँको बीच आज बिहानकी बेन्जिङमा हुई भेटवार्तामा नेपाल चीन सम्बन्ध के विविध आयामके छलफल हुलक। उहाँ स्थित नेपाली दूतावास जनेर बा विशेषत विकास सहकार व्यापार लगानी पर्यटन राजनीतिक आदान प्रदान तथा जनता के बीच सम्बन्ध थप सुदृढ बनेना विषयमा विचार आदान प्रदान हुलक। दूतावासके कहिबा नेपाल ओ चीन बीचके दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भा आफिन सुदृढ गतिशील बनेना सीपीपीसी अध्यक्ष वाङकी दृढ प्रतिबद्धता के उच्च प्रशंसा प्रति मन्त्री खनाल दुई देशकी बीचके परम्परागत मित्रता व पारस्परिक सहयोग आगामी दिनमा आफिन सशक्त हुति जेना विश्वास व्यक्त गर्न रहे। मन्त्री खनाल आज व्हाइट पामगुडाको भ्रमण गर्न हुना हो। ओकर पाछा चिनिया संचार माध्यम तथा रोयटसँग अन्तर्वार्ता दिन हुन तालिका रहलबा। उहाँ प्रधान नेपाली दूतावास बेन्जिङमा आयोजना हुन लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन हुलबाट मन्त्री खनाल चीनके विदेश मामिला मन्त्री तथा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिके राजनीतिक ब्यूरो सदस्य वाङ ईको निमन्त्रणामा आइतबार बिहानकी बेन्जिङ पुग्ल रहे। उहाँको बीच सोमबार प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय भेटवार्ता हुल मन्त्री खनाल भ्रमण सम्पन्न गरे। काल असार तीन गते स्वदेश लग्न हुन कार्यक्रम रहलबा। खोज खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पाछ फेरसे विश्वकर विश्राम उदायक रेडियो टिका पुरा फेम
4: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जा सेकल
5: अरे का करूरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गेल बाटु मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का
4: मिस्तरान बर्जनाउ कना घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट अल्युमिनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्रफे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848543426।
8: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
9: असार 6 गते पहिलो शनिबार
8: आउने भएकाले समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने चिलाउने दुख्ने घाउ दुबीको समस्या लाटो र फुस्रो दाग देखिने पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या इक्जेमा सोब्रियासिस गोलो दाग बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने छाला सम्बन्धी रोगको समस्या पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने चिलाउने धातु खट्ने सेतो पानी बग्ने यौन दुर्बलता शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने कपाल चिलाउने चाया पर्ने डेन्ड्रफ कपाल झर्ने रौ नजम्ने तालुको रौ झर्ने समस्या अनुहारमा चाया डन्डीफोर चिरा परेको फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या अनुहार खस्रो हुने फुट्ने चिरा पर्ने अनुहार बाङ्गो हुने समस्या
10: साथै प्रत्येक दिन साँझ 4 बजेदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
9: दिन असार 6 गते पहिलो शनिबार
8: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर 1 कैलाली सम्पर्क नम्बर 9868800008 र 9825637772।
11: के तपाईलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
12: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: फिफा विश्वकप 2026 अन्तर्गत समूह एचके उरुग्वे और साउदी अरब बीच के खेल बराबरी टुंगलबा अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित मियामी स्टेडियम में आज बिहान के हुलक दुनु खेल में दुई टोली एक एक गोल के बराबरी खेल्ती अंक बल्लबाट खेलके 41 मिनट में साउदी पहिलो अग्रता लिएर रहे। वकरलाक अब्दुल्लाह अलरामी गोल कर्ती साउदी अग्रता दिलबाट ओसँग साउदी 1-0 गोल के अग्रता लम्बा समयसम्म टिकाउन सकल। खेलके 80 मिनटमा उरुग्वे केलाक म्याक्सी अराजोले गोल कर्ती खेल बराबरी लन्ल। वकर पाछ दुनु टोली गोल गर नै सिक्ल तर अन्तत खेल 1-1 गोलके बराबरीमा ओराइल रह। अस्तक खेल संघ समूह एचमा 4 टोली पहिलो खेल पाछ समान 1-1 अंक जोड्लबाट। गयक रात हुलक समूह एचके और खेलमा स्पेन हो के भर्डेल फे 1-1 के बराबरी खेल्ल रहे। यी समाचार संघ खोज खबर बरल जनाइसे पहिले खबरके मुख्य शीर्षक फेर फेक्छु। क्षयरोग मुक्त पालिका अभियान अन्तर्गत टिकापुर नगरपालिकामा क्षयरोगकी जोखिम समूह स्क्रिनिङ तथा खोज पताल शिविर। राजसपा सुदूरपश्चिमकै सभापति विष्ट निर्वाचित। चिकित्सा शिक्षा आयोगद्वारा छात्रवृत्ति अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि 2083 स्वीकृत। ओफिफा विश्वकप 2026 उरुग्वे र साउदी अरब बीचकै खेल बराबरी। लिजा बक्ला खोज खबर रह प्राविधिक मित्र छपिलाल चौधरी धन्यवाद। लिटी बक्ला खोज खबर से मिता चौधरी बिराइटो एगार पास 6 बजे की खोज खबर सुना सिक्बी सामुदायिक रेडियो टीका प्रफम सुधी रवि राम राम।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतवास परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: दाई नाच बा कहाँ जाए लग बट
1: पेशाब लाटा चर्पी जाए टुका
0: ए रुको नाट पछि नोकल छे मै टर्च लाइट ओ लट्ठी दिहेटु लेख जाओ
1: काचे चुनु लट्ठी ओ टर्च लाइट
0: का कर रही दाई राटिक बाला बाहे निकल पर्लसी वा टॉयलेट जाए पर्लसी दैया फे टर्च लाइट बार्ख ओ लम्बा लट्ठी देख के न जाए पर्था का कर कि बर्खा छाक बा साप रहसे थ टर्च को अजराले सापन ल्या खसे जाई था वो लट्ठी ठैक ठैक आओ सुनकर साफ भक्त का
1: हो कतरा मजा सलाह डेली मार छोटकी छाई
0: दाई हम ना स्कूली मैडम सर हूँ साफ नुक सीधना ठाव सी न्यांग पड़ल से वो काम कर पड़ल से जहा फेठ होशियार भी पथा गई सीखे लाट का आम छेटवा दिवा झपा अथवा ध्यान घास चलक ठाव में न्यांग पड़ल से लम्बा लट्ठी देख ठैक ठैक बजेटी न्यांग पथा गई कल बाट
2: साफ बर्खा छाकक समय में सुखा ठाव बैठ मन पड़े ई मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैसना बिलकोर से सुखा ठाव का खोजी में उपरा बाहर निस्कट
1: मोस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर साप मानव बस्ती लग्घ आई सक
3: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कई पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सकता
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भयो म त अब
6: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रेक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
5: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
6: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
7: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
5: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
8: हामी कहाँ सियट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्र्याक्टर बस ट्रक टिपर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ
9: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
6: सम्पर्क नम्बर 091560470 र मोबाइल नम्बर 9848578।

0: बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे ग्वज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वात खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर बिहारी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41 208 और 98486 39 261।

0: टीकापुर के साम थारू संस्कृति के पहचान, थारू कला संस्कृति को मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैतीबा। नाच गीतबाज परंपरागत खानपीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: टीकापुर के साथ थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैती बा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिटी 2083 असार 3 4 5 6 और 7।

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
4: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-4857-1828।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
5: मै नै जाइँ, उहाँ आफ्नो अनुहार बिगारके घर से बाहर नै निकल छु।
0: उहे मारे त तुहिन उहाँ पठाइको। यहाँ हेर, ई पत्रिकामे लिखल बा मनिष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तवई तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तू मैं अब भी ही जाएं।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपारके तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टीकापुर। फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।
7: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, 101 मेगाहर्ज।

0: कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मुनियमको झ्याल ढोका?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मुनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
0: अब त म ढुक्क।
2: मिलन अल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
1: मोबाइल नम्बर 98 48 51 43 26। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।

0: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
1: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849585808।
2: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टिकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइटिए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली, फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9848423959।
3: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
4: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
5: भ्रष्टाचार करो या मनन खुल्के विरोध करी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: बुका पिए रही था, कभी पेंसिल ले रही था, कभी झोले फटा का आज इठा कहा हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन भो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।

0: टीकापुर के साम थारो संस्कृति के पहचान, थारो कला संस्कृति और मौलिक पहचान, हमार गौरव हमार स्वाभिमान। थारू सांस्कृतिक मेला 2083 टीकापुर कैलाली में भव्य आयोजना हुई जैती बा। नाच गीतबास परंपरागत खान पीन और सांस्कृतिक प्रस्तुति के अनुपम संगम।
1: टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन, टीकापुर बाजार में देखनु तुहिन।
0: आई हमार संस्कृति जगाई, हमार पहचान है और उजरार बनाई। स्थान टीकापुर कैलाली के सिटी हॉल, मिति 2083 असार 3 4 5 6 और

0: गते गणेशपुर खोप क्लिनिक भवन, वडा नम्बर 3 असार 9 गते रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र र वडा नम्बर 1 असार 10 गते ज्योतिनगर शहरी स्वास्थ्य प्रबन्धन केन्द्र। सबै वडाहरूमा भेला हुने समय बिहान 10 बजेदेखि। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
1: हाम्रो सहयोग कैखल डेन्टीबाटी देन मोटरसाइकल घुमाकर धर्ने करिना
2: बैठा बैठा ब्रह्मान रसरस मर पार्छ बैठाई को एकजना ब्रह्मान पकड़ का बैठी उपचार केन्द्र सम पुगाइबेर ब्रह्म्या बेहोस हुई सेक ना हुई लको से पाछ से पकड़ का बैठा पर्था का
3: ब्रह्मान अगर हुई कई का मई पकड़ का बैठा टू सुनील जी अपना देशी मोटरसाइकिल स्वयं सेवक हुई कारण सर्पडंसक ब्रह्मान उपचार केन्द्र लगना सजिलो हुई बा
2: एम्बुलेंस और चार पहिया सवारी से मोटरसाइकिल जो सब कुछ हम सजिला पा दी था कतना ठमटा मई असक मोटरसाइकिल स्वयं सेवक उपलब्ध बाट सजिला से वो झट्ट पा जिला से ब्रह्मान चार पहिया का सवारी साधन में सजिलो हुईना मेरक सुचाक लगभग एंटी भेनम हुईलाक उपचार केन्द्र में लै जाए पर्था
1: अपना उम्र जैने करी ना मई द्वान लगा के राजे
2: वहां न कटलक सपक फोटो खींचला बाटी कर से उठेलन बिहार फोटो हुईला से सपक चिन्ह सजिलो हुई था उपचार करना से सजिलो हुई था
3: फोटो मोर मोबाइल में बा अब हमरा जा जाए नहीं तो ढील हुई जी
4: सफर दस डालन कल से उपचार कला मोटरसाइकिल चालक व मोटरसाइकिल स्वयं सेवक से सहयोग ली बिरमे आना अपना वो मोटरसाइकिल चालक का बीच में सुरक्षित हिना मेर से बैठाई वो लगभग एंटीभेनम उपलब्ध होना सर्पदंश उपचार केन्द्र में लै जा रही सप्प कटल से मोटरसाइकिल चालक बनाई लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र पुगाई जीवन रक्षा करी
5: सर्पदंश संबंधी भर पर्द वो सही जानकारी प्राप्त कर वो लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org में हेर सेती था
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश